0: जाएंगे तिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: आए हैं तो काम भी बताइए,
2: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
3: कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता।
4: ना ना ना ना ना
5: कैसे हो किराए।